पर जीए प्रमोशंस पेश करते हैं। बंबई में तहलका मचाने के बाद पहली बार यूके में संगीत की दुनिया का एक बेजोड़ धमाका। जी हाँ, बॉम्बे बीच ऑर्केस्ट्रा, डिनर एंड डांस शोज थ्रू आउट मई एंड जून ऑल ओवर लंदन। फॉर वेन्यूज एंड डेट्स फोन जीपी देसाई ऑन 01452 5590 और राजू पटेल ऑन 07373 58176। आपके दिलों को डुलाने वाला मनोरंजन का एक शानदार हल्ला गुल्ला, बॉम्बे बीट ऑर्केस्ट्रा। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, कम एंड एंजॉय एन इवनिंग विथ बॉम्बे बीट ऑर्केस्ट्रा। जी हाँ, नए और पुराने गानों की धुआंधाम महफिल यानी कि बॉम्बे बीट ऑर्केस्ट्रा। टू सेव डिसअपॉइंटमेंट फोन नाउ जीपी देसाई ऑन 01452 5590 और राजू पटेल ऑन 07373 58176। रिमेंबर।